कभी सोचा है कि इंडिपेंडेंस डे आते ही हमारे पास कुछ गाने ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जय हो संदेशे आते हैं, ए वतन ये जो देश है तेरा, और आने भी चाहिए। लेकिन अगर पेट्रियोटिज्म का मतलब सिर्फ देश की तारीफ करना नहीं है, तो शायद कुछ और गाने भी हैं जो इस मुल्क की रूह को, उसकी आत्मा को समझते हैं। ये देश से प्यार का गाना नहीं है, ये उस बेचैनी का गाना है जो कहता है जो गलत है उसे बदलना है, और फिर आता है साड़ा हक।

एक आवाज जो कहती है कि मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। लेकिन इस इंडिया को सिर्फ हक नहीं चाहिए, उसे आजादियां चाहिए।

कभी घर से, कभी डर से, कभी उन एक्सपेक्टेशन से जो हमारे लिए किसी और ने लिख दी। और फिर जब सब कुछ मुश्किल लगे तो आशाएं हैं।

0: क्योंकि शायद इस देश की सबसे बड़ी आदत ही यही है, उम्मीद छोड़ने से इनकार, और फिर वो आवाज जो उम्मीद से एक कदम आगे जाती है। ये गाने देश का नाम नहीं लेते, लेकिन शायद देश हम में जो जगाता है उसका नाम जरूर लेते हैं। बेचैनी, हक, आजादी और उम्मीद, ये भी तो इंडिया है। इस काउंटडाउन पर नंबर 9 पर है धमाल का गाना साड़ी, लेकिन अभी के लिए चलाऊंगा गाना नंबर 8 आवारापन 2 से, सुबोध शर्मा की आवाज में, यह है बेजनून।
1: नंबर 8।
2: फिर

0: तुम्हीं बंधु की वो केयर फ्री सी दुनिया जहां दोस्त हैं, रोमांस है और लाइफ थोड़ी सिंपल लगती है। करण जौहर ने अपनी पहली दो फिल्म्स में हमें इसी दुनिया का सपना दिखाया था। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, बड़े घर बड़े इमोशंस बड़े गाने। और फिर 2006 में करण ने खुद अपने बनाए हुए ड्रीम वर्ल्ड में एक दरवाजा खोला, कभी अलविदा ना कहना। एक ऐसी कहानी जहां शादी है, प्यार है, लेकिन प्यार के बावजूद लोग खुश नहीं है। इंडिया ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। किसी ने कहा इट वाज अ ब्रेव फिल्म, किसी ने कहा ये तो एंटी संस्कारी है। करण खुद मानते हैं कि फिल्म थोड़ी ओवरब्लोन थी, लेकिन उसका दिल सही जगह पर था। शायद 20 साल बाद हम समझने लगे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। मेरा एक सवाल जरूर है, करण ने इनफिडेलिटी को जज नहीं किया, लेकिन क्या उन्होंने उसे पूरी तरह समझने की कोशिश की? क्योंकि वो कहानी के बीच में नहीं खड़े थे, वो बस दूर से देख रहे थे। लेकिन एक बात तय है, कभी अलविदा ना कहना के बाद करण जौहर ने कभी पहले जैसी फिल्में नहीं बनाई। वो उस फिल्म से पूरी तरह उबर नहीं पाए। 20 साल बाद उसी फिल्म का एक गाना जो शायद वक्त से कभी बाहर ही नहीं हुआ, तुम ही देखो ना, सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में। दिस इज माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक,
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 5.

तबाही टॉप फाइव में आ गया है और उसी वक्त टॉक्सिक के ट्रेलर ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, भाई ये फिल्म है क्या? देखो मैंने ट्रेलर देखा और मुझे एक चीज समझ आ गई, ये फिल्म या तो ब्रिलियंटली गुड होगी या टेरिफाइंगली बैड होगी, बीच का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। कहानी है गोवा की, लेकिन वो गोवा नहीं जो हम पोस्ट कार्ड्स में देखते हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप पे चले जाते हैं। ये 1960s के गोवा की कहानी है। इंडिया आजाद हो चुका था लेकिन गोवा अभी भी पोर्चुगीज के कंट्रोल में था, और इसी दुनिया में पावर है, ग्रीड है, गैंग्स हैं, और वायलेंस इतनी कि कभी कभी लगता है कि स्क्रीन भी खून से भीग जाएगा। और जो इस फिल्म में औरतें हैं, द वेमेन, जी हाँ, कैरेक्टर्स पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह फ्रेम किया गया है, जिस तरह सेक्सुअलिटी और वायलेंस को उनके साथ मिक्स किया गया है, वो एम्पावरमेंट और ऑब्जेक्टिफिकेशन के बीच की जो लाइन है उसे बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से ब्लर करती है। शायद इसलिए टॉक्सिक का ट्रेलर मुझे एक्साइट करने से ज्यादा इंट्रीग कर रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना एक्सट्रीम होने की परमिशन खुद को बहुत कम लोग देते हैं। अब सवाल यह है कि ये मैडनेस सिनेमा बनेगा या सिर्फ मैडनेस ही रह जाएगा, ये तब पता चलेगा जब फिल्म बहुत जल्द थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टॉक्सिक को हम साइड में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे टू गुड ओल्ड फैशन बॉलीवुड। ये कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का गाना ऊंचा लंबा कद, व्हिच इज ऑन नंबर 4 दिस वीक। नंबर 4।

यार इमरान हाशमी को भी बॉलीवुड ने एक अजीब सा गिफ्ट दिया है। वो हर बार हीरो बन के नहीं आए, कभी वो लवर बने, कभी गैंगस्टर, कभी एक जर्नलिस्ट, कभी वो आदमी जो खुद से ही हार रहा था। लेकिन हर बार उनके पीछे एक ऐसा गाना जरूर था जो पिक्चर से बाहर निकल गया।

जरा सा जन्नत से निकला था, लेकिन कितने लोगों की अपनी लव स्टोरी का बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया। किसी को शायद वो पहली बार किसी के लिए फील करना याद आया, किसी को वो रात याद आई जब फोन हाथ में था और मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं थी।

0: फिर आया बीते लम्हे और जिस सिन से गाना था द ट्रेन, उसकी कहानी पीछे रह गई, लेकिन हार्ट ब्रेक की कहानी में ये गाना आज भी फ्रंट रो में बैठा है।
1: बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं।
0: और फिर बोल दो ना जरा, वो तो जैसे उन लोगों का गाना बन गया जिनके पास कहने को बहुत कुछ है, बस कह नहीं पाते। शायद इसलिए इमरान की सबसे बड़ी लेगेसी उनका बॉक्स ऑफिस नहीं रही है। इमरान की फिल्मों ने हमें अपने इमोशंस के लिए गाने दिए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट आवारापन, उस लेगेसी में एक और खूबसूरत एडिशन। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदल रही। 37 हफ्तों से गाना इस काउंटडाउन पे मौजूद है एंड इट स्टिल इज नंबर 1 ऑन द मिर्ची टॉप 20। द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द काउंटडाउन वंस अगेन इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर बाय अरिजीत सिंह। नंबर 1।

0: आज का एपिसोड सिर्फ काउंटडाउन नहीं था, एक बच्चे की कहानी थी जिसने अपना घर खोया और एक देश को नाम दिया। एक सवाल था कि 80 साल बाद हम क्या बन गए हैं, और कुछ गाने थे जो आजादी को सल्यूट नहीं करते, उसका मतलब ढूंढते हैं। शायद यही है इस मुल्क का असली गाना, सवाल, बेचैनी और थोड़ी सी उम्मीद। और इन सबके बीच नंबर वन पर गहरा हुआ इटर्नल रोमांस। कुछ गाने चार्ट्स पर ऊपर रहते हैं और कुछ वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। ये था आपका मिर्ची टॉप 20 एंड मैं आपसे जल्द मिलूंगा नई स्टोरीज और नए गानों के साथ। तब तक गाने सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। आर रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, it's hot.

0: गाओ है रेला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो।
1: अरे धूम धूम थिरके जा पाओ मैं जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो।

जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो डैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: घोड़ा बॉय बन जाता हूँ।
1: yeah. उड़ती है खबरें लेता ना स्ट्रेस। no. गेम का कार्ट ऑन टू द नेक्स्ट। oh. प्लेन है प्राइवेट लाइफ है प्लस। yeah. मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस का लगा। रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा।

0: Mitchie, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। This is the Gaana Indie Top 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गानों में दो नई एंट्रीज हैं। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की गाना नंबर 10 के साथ। गाने का नाम है मूव बॉडी, ज़ारा खान स्केल्स का गाना। चार हफ्तों से है ये बरकरार। पिछले हफ्ते से तीन पोजिशन नीचे ड्रॉप होके मूव बॉडी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद हर्ष नुस्सी की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है साड़ी सुन। आठ हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके साड़ी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द होल काउंटडाउन एंड अ कैसेट क्लासिक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, सुनेगी कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड इस सारे कॉम्बिनेशंस की वजह से 8 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ अभी के अभी, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक ऐसे आर्टिस्ट की आवाज है जिसके साथ एक पूरी जनरेशन ने प्यार करना सीखा है। सोच के देखो, कॉलेज का पहला क्रश या वो एक तरफा प्यार, गाड़ी में बैठे रात की ड्राइव्स, एक पूरी जनरेशन को इन्होंने प्यार करना सिखाया। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली शान। मैं शान का नाम भी ऐसे मुस्कुराए बिना नहीं ले पाती हूँ, बिकॉज उनकी गानों में, उनकी आवाज में हमें उनकी मुस्कुराहट सुनाई देती है। पूरे 3 दशक हो चुके हैं एंड शान इज स्टिल गिविंग अस द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम। चाहे वो फिल्मों के गाने हो या नॉन फिल्म गाने हो, चांद सिफारिश हो या हे शोना, अलग अलग प्यार के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं शान की आवाज रही है। नाउ काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स अ नया नवेला गाना, उसमें उनके साथ हैं दीदार कौर, एंड ये दोनों का पहला कोलैबोरेशन है। उदीपन शर्मा का म्यूजिक है, श्लोक लाख के लिरिक्स, एंड इस गाने में वो शान के प्यार वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, दीदार कौर एंड शान की आवाज में। गाने का नाम है दिलदारा, अ नई नवेली एंट्री। इस गाने ने डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।

लफ्ज़ कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: संजू राठौड़ की आवाज, गाने का नाम है बैंगल्स। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले मेरा फेवरेट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन, फरक की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम तारे, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, this is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kaneka. This show is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJ Kaneka. Koi gana suggest karna ho, baate batani ho, bindas aake hit me up. Sanju Rathod ki awaaz aisi hai, sunte hi pata chal jata hai, it's his song. इस काउंटडाउन पे एक नई नवेली एंट्री हुई शान का दीदार कौर की आवाज में, हमने सुना दिलदारा ऑन गाना नंबर 8। इनफैक्ट शान की आवाज भी वही है, पहले नोट से यू नो इट्स हिम, चाहे वो सिंगर की आवाज हो या कुछ गानों का इंट्रो म्यूजिक, वो गाने जो एकदम याद आ जाते हैं ना, दे गॉट दैट स्टिकीनेस फैक्टर। आज के शो में जो मैं कैसेट क्लासिक में आपके लिए गाना बजाने वाली हूँ, दैट इज आवर 90s एंड 2000s का आइकॉनिक पिक, उस गाने का मैं इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। @RJ Kaneka पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने का है।

@RJ करेंगे और इंस्टाग्राम पर बताओ मुझे गाना कौन सा है। ये पूरा गाना शो पर आगे हम आपके लिए प्ले करेंगे। बट टॉकिंग अबाउट टेक अवे फैक्टर्स, ऐसी आवाज, ऐसा म्यूजिक जिसे सुनते ही हम आर्टिस्ट को एकदम रिकग्नाइज कर जाते हैं, उसमें से एक आवाज है रेखा भारद्वाज की। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो उन्हीं का गाना है। शायद आप गाना पहली बार सुने लेकिन सुनकर लगेगा कि इस गाने को तो आप बरसों से जानते हैं। दैट मैजिक इज रेखा भारद्वाज। ये गाना मुसाफिर कैफे नाम की सीरीज का है, जो एक नेटफ्लिक्स सीरीज है। कंटेम्प्रेरी लव स्टोरी, यंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम उसके बारे में है, लेकिन प्यार को डेफिनेशन दे दिया रेखा भारद्वाज की आवाज। क्योंकि रेखा भारद्वाज की आवाज में प्यार गहरा लगता है, सदियों पुराना लगता है। उनकी आवाज में वो तजुर्बा है, एक याद है जिसको सुन के लगता है कि ब्रो ये दर्द तो पहले भी झेला है। एंड मुसाफिर कैफे जो शो है वो एक बुक पे बेस्ड है, सो ऑलरेडी उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। द सीरीज इज ऑल अबाउट लव। ये जो गाना है ये भी एक नई नवेली एंट्री है। इस गाने का जो दिल है ना वो बहुत खूबसूरत है और बहुत दुखी भी है। द सॉन्ग इज अबाउट राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, बट रेखा भारद्वाज की आवाज में इट विल ऑल साउंड मैजिकल। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। नई नवेली एंट्री ऑन द काउंट डाउन, राघव कौशिक एंड रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है दरमिया। इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 5। यू ऑल लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 5।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5

तबाही टॉप 5 में आ गया है और उसी वक्त टॉक्सिक के ट्रेलर ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, भाई ये फिल्म है क्या? देखो मैंने ट्रेलर देखा और मुझे एक चीज समझ आ गई, ये फिल्म या तो ब्रिलियंटली गुड होगी या टेरिफाइंगली बैड होगी, बीच का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। कहानी है गोवा की, लेकिन वो गोवा नहीं जो हम पोस्ट कार्ड्स में देखते हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप पे चले जाते हैं। ये 1960s के गोवा की कहानी है। इंडिया आजाद हो चुका था लेकिन गोवा अभी भी पोर्चुगीज के कंट्रोल में था, और इसी दुनिया में पावर है, ग्रीड है, गैंग्स हैं, और वायलेंस इतनी कि कभी कभी लगता है कि स्क्रीन भी खून से भीग जाएगा। और जो इस फिल्म में औरतें हैं, द वेमेन, जी हाँ, कैरेक्टर्स पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह फ्रेम किया गया है, जिस तरह सेक्सुअलिटी और वायलेंस को उनके साथ मिक्स किया गया है, वो एम्पावरमेंट और ऑब्जेक्टिफिकेशन के बीच की जो लाइन है उसे बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से ब्लर करती है। शायद इसलिए टॉक्सिक का ट्रेलर मुझे एक्साइट करने से ज्यादा इंट्रीग कर रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना एक्सट्रीम होने की परमिशन खुद को बहुत कम लोग देते हैं। अब सवाल यह है कि ये मैडनेस सिनेमा बनेगा या सिर्फ मैडनेस ही रह जाएगा, ये तब पता चलेगा जब फिल्म बहुत जल्द थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टॉक्सिक को हम साइड में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे टू गुड ओल्ड फैशन बॉलीवुड। ये कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का गाना ऊंचा लंबा कद, व्हिच इज ऑन नंबर 4 दिस वीक। नंबर 4।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3.

यार इमरान हाशमी को भी बॉलीवुड ने एक अजीब सा गिफ्ट दिया है। वो हर बार हीरो बन के नहीं आए, कभी वो लवर बने, कभी गैंगस्टर, कभी एक जर्नलिस्ट, कभी वो आदमी जो खुद से ही हार रहा था। लेकिन हर बार उनके पीछे एक ऐसा गाना जरूर था जो पिक्चर से बाहर निकल गया।

जरा सा जन्नत से निकला था, लेकिन कितने लोगों की अपनी लव स्टोरी का बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया। किसी को शायद वो पहली बार किसी के लिए फील करना याद आया, किसी को वो रात याद आई जब फोन हाथ में था और मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं थी।

0: फिर आया बीते लम्हे और जिस सिन से गाना था द ट्रेन, उसकी कहानी पीछे रह गई, लेकिन हार्ट ब्रेक की कहानी में ये गाना आज भी फ्रंट रो में बैठा है।
1: बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं।
0: और फिर बोल दो ना जरा, वो तो जैसे उन लोगों का गाना बन गया जिनके पास कहने को बहुत कुछ है, बस कह नहीं पाते। शायद इसलिए इमरान की सबसे बड़ी लेगेसी उनका बॉक्स ऑफिस नहीं रही है। इमरान की फिल्मों ने हमें अपने इमोशंस के लिए गाने दिए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट आवारापन, उस लेगेसी में एक और खूबसूरत एडिशन। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदल रही। 37 हफ्तों से गाना इस काउंटडाउन पे मौजूद है एंड इट स्टिल इज नंबर 1 ऑन द मिर्ची टॉप 20। द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द काउंटडाउन वंस अगेन इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर बाय अरिजीत सिंह। नंबर 1।

0: आज का एपिसोड सिर्फ काउंटडाउन नहीं था, एक बच्चे की कहानी थी जिसने अपना घर खोया और एक देश को नाम दिया। एक सवाल था कि 80 साल बाद हम क्या बन गए हैं, और कुछ गाने थे जो आजादी को सल्यूट नहीं करते, उसका मतलब ढूंढते हैं। शायद यही है इस मुल्क का असली गाना, सवाल, बेचैनी और थोड़ी सी उम्मीद। और इन सबके बीच नंबर वन पर गहरा हुआ इटर्नल रोमांस। कुछ गाने चार्ट्स पर ऊपर रहते हैं और कुछ वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। ये था आपका मिर्ची टॉप 20 एंड मैं आपसे जल्द मिलूंगा नई स्टोरीज और नए गानों के साथ। तब तक गाने सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot. Mirchi. It's hot.

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Energy. It's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हेलो देयर, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वेदर चेक। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 70 डिग्रीज फारेनहाइट, इट्स क्लाउडी एंड इट्स एक्चुअली फीलिंग लाइक 74 डिग्रीज फारेनहाइट। एंड हेड्स अप, अगर अभी फिलहाल तुम बाहर हो तो रेन इज एक्सपेक्टेड, सो अम्ब्रेलास को लेकर साथ में निकले हो तो अच्छा है, नहीं तो भीगना पड़ेगा। वी हैड ऑलमोस्ट 15 मिलीमीटर्स ऑफ रेन इन द लास्ट 24 आवर्स, लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में हम थोड़ी सी कामर रेन एक्सपेक्ट करें अराउंड 2 millimeters ki. By around 1 p.m. we are looking at partly cloudy skies. Temperature wise, today's low is around 68 degrees Fahrenheit with a high of 85 degrees Fahrenheit, and with the humidity it could feel a little bit warmer, like 89 degrees Fahrenheit. Yesterday's high was 81 degrees Fahrenheit, so aaj definitely it's going to bring in some more heat. And of course, agar bahar nikal rahe ho to layer ke player ban kar niklo, wear your sun protection SPF 50++++ ke saath wala, keep yourself hydrated and mirchi ki vibes बना कर रखो। सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसला, एंड कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में एंड लेट्स रिवाइंड हिस्ट्री ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। 1807 रॉबर्ट फुल्टन्स क्लेमोंट स्टीमबोट बिगिंस इट्स हिस्टोरिक रन अप द हडसन रिवर। मतलब कि बॉस, बिफोर वी हैड ट्रैफिक ऑन द न्यू जर्सी टर्नपाइक, पीपल वर ऑलरेडी फिगरिंग आउट हाउ टू मेक कम्यूटिंग हैपन ऑन वाटर। 1896 में गोल्ड इज डिस्कवर्ड नियर द क्लोंडाइक रीजन, क्लिकिंग ऑफ द मैसिव क्लोंडाइक गोल्ड रश। 1945 में इंडोनेशिया डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द नेदरलैंड्स एंड देन 1947 में द रैटक्लिफ लाइन इज ऑफिशियली पब्लिश्ड, मार्किंग द न्यू बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अ ह्यूजली कॉन्सिक्वेंशियल मोमेंट इन साउथ एशियन हिस्ट्री। 1969 में हरिकेन कमील, अ कैटेगरी 5 स्टॉर्म हिट्स द मिसिसिपी कोस्ट विद डेवेस्टेटिंग फोर्स। 1998 में बिल क्लिंटन टेस्टिफाइज बिफोर अ ग्रैंड ज्यूरी एंड पब्लिकली एडमिट्स टू हिज रिलेशनशिप विद मोनिका लुविंस्की। एंड लास्टली 1999 में अ मैसिव 7.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्राइक्स इज्मित टर्की, कॉजिंग डेवेस्टेटिंग लॉस ऑफ लाइफ। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, ये है मिर्ची मॉर्निंग्स एंड मुझे फॉलो कर सकते हो तुम इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

देखो सुबह सुबह तुम्हारी कॉफी कंफ्यूज्ड हो सकती है, तुम्हारा ब्रेन जो है वो बफरिंग कर सकता है, लेकिन गेस व्हाट, कौन सी चीज सही टाइम पर शुरू होती है, वो है मिर्ची मॉर्निंग्स, व्हिच इज ऑफिशियली ऑन। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, एंड वेलकम टू द पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग्स वेयर वी प्रिटेंड टू हैव आवर लाइव्स टुगेदर। एक्चुअली प्रिटेंड करने की जरूरत है नहीं, कुछ बढ़िया से गाने मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ, कुछ गपशप तुम्हें देने वाली हूँ, और साथ साथ में अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स, म्यूजिक, मस्ती, मिर्ची एंड मच मोर, ये सब कुछ मिलने वाला है। इसके बाद लाइफ सॉर्टेड हो ही जाती है, चाहे किसी भी प्रॉब्लम से तुम गुजर रहे हो। अभी के लिए कुछ घंटों के लिए उन सारी प्रॉब्लम्स को रखो बैक सीट पर, एंड व्हेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क, पैकिंग योर लंच बॉक्स, या फिर रशिंग थ्रू दैट स्कूल ड्रॉप ऑफ, और जस्ट स्टेयरिंग एट योर लैपटॉप थिंकिंग मैं यहाँ पर क्यों आया। जो कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारी मॉर्निंग्स हो गई ऑफिशियली मिर्ची दार, बिकॉज मैं बोले तो प्रिसला आ चुकी हूँ लेकर मिर्ची मॉर्निंग्स। सो टर्न इट अप, सिप दैट चाय और कॉफी, बने रहो मेरे साथ अगले कुछ घंटों के लिए, और मुझे फॉलो भी करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है विर्चे मॉर्निंग्स। और अब थोड़ी सी क्रिकेट की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया बाय 9 विकेट्स इन द फर्स्ट टेस्ट इन डार्विन एंड दिस इज बिग बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैव नेवर बिफोर लॉस्ट टू बांग्लादेश एट होम अक्रॉस फॉर्मेट्स। दैट्स राइट, बांग्लादेश हैव नाउ बिकम ओनली द थर्ड एशियन टीम आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान टू विन अ टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया in Australia. For Bangladesh, it's also their second ever test victory against Australia. So Bangladeshi cricket fans, aaj to celebration banta hai. And Australian fans, थोड़ा सा चाय पी लो, थोड़ा सा वक्त दो, emotions settle होने दो. And speaking of celebrations, if diamonds are your thing, then Tanishq presents Festival of Diamonds. Get up to 25% off on diamond key value and making charges. साथ साथ में अगर तुम्हारे पास पुराना gold पड़ा हुआ है, which is 18 carats and above, उसको लेकर जाओ, exchange कराओ, zero deduction पर, only at Tanishq, जहाँ पर Festival of Diamonds चल रहा है. Terms and conditions applied. अभी फिलहाल team मिर्ची प्रिज बन की बारी है. फॉलो मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS. सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, देन लिसन अप. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में. अ बिग हैप्पी बर्थडे शाउट आउट टू ऑल द पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग टुडे. आज का दिन काफी स्पेशल है. एक तो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे और साथ साथ में तुम्हारे कुछ लेजेंडरी सेलिब्रिटीज भी अपना बर्थडे मना रहे हैं. सबसे पहले रॉबर्ट डेनीरो हु वाज बोर्न इन 1943, एंड देन वी हैव गॉट अनदर ब्रिलियंट एक्टर शॉन पेन हु वाज बोर्न इन 1960 एंड मेकिंग द यंगर जनरेशन प्राउड. ऑस्टिन बटलर हु was born in 1991. He's the star of Elvis and June Part 2. Also celebrating is Thaisa Farmiga, born in 1994, known for her American Horror Story roles. And finally, the kid Laro is also celebrating his birthday today, who was born in 2003. So whether you're turning 21, 31, 51 or 71, or simply choosing to keep your age classified, today is your day. Happy birthday to you from me, Bolo to Prisala, only on Mercy Mornings. Come and tell me, agar kisi ko shout out dena hai birthday ka khud ke liye ya phir apne friends ke liye. Mera handle name hai Mirchi Pris, that's on Instagram and X, that is MIRCHIPR. IS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi, that's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

0: गानों को थोड़ा सा रोक कर सुनते हैं अभी मिर्ची मॉर्निंग्स पर प्रिसला के साथ आज का लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट।
1: Raj Jewels wishes everyone happy and healthy morning. Today morning gold trading at 4390. 4390 पर ट्राई आउंस के साथ आज सुबह गोल्ड की प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और गोल्ड एग्रेसिवली अपवर्ड ट्रेंड पर है। इससे पहले गोल्ड और ऊपर जाए आइए RajJewels.com के साथ 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, एनी शेप एनी साइज एनी कलर एनी क्लैरिटी। आइए राज ज्वेल्स की स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन को अवेल करें जिसमें आप गोल्ड ज्वेलरी आज घर लेके जाएं और 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, बिना किसी हिडन फी के आज ज्वेलरी फाइनेंस करा सकते हैं 9 मंथ्स के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के। ज्वेलरी आपके साथ आज घर जाती है और 9 इंस्टॉलमेंट्स में राज ज्वेल्स को पैसे मिलते हैं। कैसे, आइए RajJewels.com पे हमारे साथ डिस्कस करें और शिप कराएं ज्वेलरी एनीवेयर विद इन यूनाइटेड स्टेट्स। थैंक यू।
0: एंड देयर यू हैव इट, लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसला। ऑफ कोर्स मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसिला एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर। सबसे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑर्डर्ड द पेंटागन टू सब्सटेंशियली रिड्यूस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद साउथ कोरिया। ट्रंप सेड द ड्रिल्स आर कॉस्टली एंड सेंड व्हाट ही सेड एन इनअप्रोप्रिएट एंड हॉस्टाइल सिग्नल टू नॉर्थ कोरिया। ही ऑल्सो सेड साउथ कोरिया डिक्लाइंड द यूएस रिक्वेस्ट टू हेल्प विद एफर्ट्स कंसर्निंग ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, कोटिंग द रिस्पॉन्स एज नो थैंक्स। साउथ कोरिया सेज इट्स रिव्यूइंग द कमेंट्स एंड होप्स द मूव कुड क्रिएट स्पेस for renewed dialogue with North Korea. Number two, a Chinese Communist Party linked official Philip Chi reportedly bought the securities building near the White House for $8.4 million. That's roughly 70 crore rupees. And yes, the location is what's raising eyebrows. The building is reportedly only about 650 feet from the White House. US officials and security experts have raised concerns about whether a property that close could create surveillance or intelligence risk. And lastly, Arsenal have beaten Manchester City 3-0 to win the Community Shield, and Arsenal wasted zero time. Ricardo Calafiori scored in just 24 seconds, followed by Kai Havertz and captain Martin Odegaard. City ko comeback ka chance hi nahi mila. Match shuru hua aur Arsenal ne terms and conditions apply bhi nahi pada. And that's your Mirchi Hour ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Mere sath connect karo Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब वो टाइम आ चुका है जिसका तुम बेसब्री से इंतजार करते हो. ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राशिज.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि, घर के मैटर्स थोड़े से स्मूथ हो रहे हैं. बस एवरीवन नीड्स टू नो देयर रोल. बाउंड्रीज सेट करो. तुम अपने घर के मेंबर हो, 24/7 कस्टमर सर्विस नहीं हो. लकी कलर फॉर यू इज कोरल. लकी नंबर इज 14. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज क्वेश्चंस केयरफुली पूछना. कॉन्वर्सेशंस को अननेसेसरीली नेटफ्लिक्स का ड्रामा मत बनाओ. कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेंथन दोज क्लोज फ्रेंडशिप्स. लकी कलर फॉर यू इज स्टील. लकी नंबर इज 6. जेमिनी दैट इज मिथुन राशि, आइडियाज बहुत हैं, ग्रेट. अब उन्हें प्रैक्टिकल प्लान्स में कन्वर्ट करो. और इमोशनल होकर इंस्टेंट डिसीजंस, अ बिग नो नो. लकी कलर फॉर यू इज पर्पल. लकी नंबर इज 23. कैंसर यानी कर्क राशि, जब टारगेट क्लियर होता है मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है, बट हाँ रेस्ट करना भी जरूरी है. लो बैटरी पर कोई भी हीरो चल नहीं सकता है. लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर. लकी नंबर इज 11. लियो यानी कि सिंह राशि, आज तुम्हारी बातों में नेचुरल अथॉरिटी और वार्मथ है. यूज इट वाइजली. पेशेंस से हैबिट्स बिल्ड करो, हेस्ट से नहीं. लकी कलर इज मस्टर्ड. लकी नंबर इज 19. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, ग्रुप प्लान्स फ्रेंडली रखने हैं तो एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो. और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने एक्चुअल फीलिंग्स को ऑनेस्टी से चेक करो. लकी कलर इज मिंट ग्रीन. लकी नंबर इज 4. एंड दैट्स इट. राशि जोन पार्ट 1 हुआ खत्म. राशि जोन पार्ट 2 यानी बची हुई राशि आएंगी थोड़ी सी देर में. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. सुनो तुम ये मिर्चीदार बैंगर्स, और मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर. और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. आई विल बी बैक इन अ व्हाइल. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: कंटिन्यू करते हैं लीब्रो से पाइसिस तक की राशियों का सफर इन राशि जोन पार्ट टू विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रो यानी कि तुला राशि, प्रोफेशनल प्लान्स अब स्टेडी होने लगे हैं व्हेन यू क्लियरली से व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड इफ यू आर फीलिंग इमोशनली न्यूट्रल टुडे दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हर दिन बॉलीवुड क्लाइमैक्स थोड़ी होने वाला है। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 8। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, डेली रूटीन को सॉलिड रखो एंड स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करो और जब विक्ट्री मिले तो सेलिब्रेट भी करो। सोलो सेलिब्रेशन में केक कौन खाएगा, तुम? Of course तुम। Lucky color for you is burgundy, lucky number is 17। Sagittarius यानी कि धनु राशि, shared plans में terms रखो clear। So everyone stays on the same page और stressful outdoor tasks को overdo मत करो यार आज के दिन। Adventure को भी थोड़ा सा limit में करो तो boss style रहेगी। Lucky color is sky blue, lucky number is 3। Capricorn यानी मकर राशि, पार्टनरशिप प्लान्स बनाते वक्त होम रियलिटीज को भी फैक्टर इन करो। स्मॉल सेटबैक्स आए तो कीप गोइंग, लाइफ गूगल मैप्स नहीं है, हर राउट परफेक्टली नहीं मिलने वाला है। लकी कलर फॉर यू इज फॉरेस्ट ग्रीन, लकी नंबर इज 21। Aquarius यानी कुंभ राशि, एनर्जी कंजर्व करो इंस्टेड ऑफ चेजिंग एवरी डे ड्रीम। प्रैक्टिकल कोऑपरेटिव अग्रीमेंट्स पे फोकस करो। ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छी है बट ब्रेन को स्टॉर्म में मत छोड़ दो यार। लकी कलर is electric blue, lucky number is 12। And finally Pisces यानी कि मीन राशि, आज urgent matters juggle करते वक्त pace yourself, simple physical self care, थोड़ा सा stretch करो, पानी पियो, मूड को बेटर करने के लिए कुछ बढ़िया मिर्चीदार म्यूजिक सुनो और बने रहो मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में। योर लकी कलर इज रोज, लकी नंबर इज 9। एंड दैट वाज द एंड ऑफ राशि जोन पार्ट 2। मेरा हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। ड्रॉप मी अ हाय देयर एंड व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। अभी मिर्चीदार बैंगर्स कमिंग अप राइट योर वे, स्टे ट्यून and stay hot।

ओके, इट्स ऑफिशियली टाइम फॉर मी टू साइन आउट ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. रैपिंग अप करते करते तुम्हें एक फन स्टोरी बताकर जाती हूँ. एन एक्सपेरिमेंटल स्टोर इन द US रिपोर्टेडली हैज एन AI मैनेजर दैट रिसेंटली फायर्ड अ ह्यूमन एम्प्लॉय आफ्टर द एम्प्लॉय अराइव्ड लेट फॉर 17 आउट ऑफ 23 शिफ्ट्स. द AI मैनेजर कॉल्ड लूना वॉज रिपोर्टेडली रनिंग ऑन क्लॉड ओपस 4.8 एंड हैड एक्चुअली क्रिएटेड एन अटेंडेंस पॉलिसी. But plot twist इसमें ये है कि Luna apparently lost track of its own policy and had to be asked to review its memory and assess the employee's performance. Imagine करो यार, getting called into a meeting at office and hearing कि हमें तुम्हारी punctuality के बारे में बात करनी है. And the person saying that is literally your boss and a robot. That is super cool यार. Or super weird for some people. This experiment is being run by Anden Labs, and honestly, this raises a fascinating question. If AI can manage humans, who manages the AI when it forgets what it was doing? Okay, on that note, I'm out of here before my manager fires me for talking excessively. Ab tumhe gaane sunane ki bari hai, so we are heading into Mirchi Dar Bangers only on Mirchi Mornings. Mera naam hai Priscilla, signing off from Mirchi Mornings right here right now. You have a happy Monday, and of course agar tum mujhe miss karoge apni garma garam chai ya coffee peete time ya commute karte time to tum mera Instagram check kar sakte ho. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. Yeah, WhatsApp par mujhe message drop karo 9033 Mirchi, that's 90

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था, तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाह।

निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना। अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओह नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा। पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी, इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सबके सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं। ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार, तभी तो वेलकम की इतनी कदर है। लेकिन बताए क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी। एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी। इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन की ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई। हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी। मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे। एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है। मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वॉज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम। एंड यू नो व्हाट, एक बड़ी इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था, यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम। किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम। लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था। एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाड वाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है। एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम। और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म। फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए। फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम। आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार। दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए, प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए। जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़े इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो पेंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश टू द हॉस्पिटल। लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हम सबको पता था कि
2: जस्सी जस्सी कोई नहीं।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And the show जस्सी जस्सी कोई नहीं was a hit, क्योंकि ये शो बात करता है अबाउट अ गर्ल हु इज अ गीक। और गीक्स को ट्रेंड में लाते हुए दिस शो ट्राइड चेंजिंग द आउटलुक कि दिमाग हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अरमान सर पर क्रश करती जस्सी के दिलों की धड़कन के साथ हमने भी उतार चढ़ाव किए हैं यार। एंड आई रिमेम्बर कैसे वी यूज्ड टू फील बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक जब अरमान और जस्सी के बीच कोई मोमेंट आया करता था। और सबसे सही बात अबाउट द शो वॉज कि कोई नहीं जानता था कि जस्सी रियल लाइफ में कैसी दिखती थी। एंड इट वॉज केप्ट टू बी अ बिग सीक्रेट। और उस टाइम पर तो ज्यादा टफ भी नहीं था बिकॉज पेपराज़ी एंड सोशल मीडिया तो था नहीं। और जब जस्सी का मेकओवर हुआ एंड वी गॉट टू सी मोना सिंह टू बी द फेस बिहाइंड जस्सी, ऑल वर इन ऑफ हर। और मुझे याद है कैसे हमने उस एपिसोड को किसी भी कीमत पर मिस ना करने की कसम खा ली थी। काफी शोज आए, काफी शोज गए, लेकिन ये बात तो सच है यार कि जस्सी जैसी कोई नहीं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अनुराधा जी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म साजन। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। अय हाय हाय, देखो पता है 90s का जमाना, तो मुझे नहीं पता कि डेटिंग के लिए कितना सेफ था और कितना यकीन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। आज की बात मैं जरूर कर सकती हूँ। आज के टाइम पर अगर कोई ऐसा कह देना कि कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, भाई तुम किसी की भी कसम खा लो, मुझे ये पता है कि तुम्हारा डाइट फूड कसम ही है, तुम्हारा चीट फूड भी कसम ही है, और जो तुम्हारा मेन कोर्स यूजुअली तुम खाते हो वो भी कसम है। यानी कि आजकल उठते बैठते सब लोग कसम ही खा रहे होते हैं, और मुझे इस डिश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना, क्योंकि वो किस तरीके की कसम खा रहे होते हैं ना, हमें उसकी क्वालिटी का बिल्कुल नहीं पता है। आप क्या बोलते हो, आप कर लेते हो यकीन इस कसम नामक डिश का जो आजकल सब खाते रहते हैं?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। चलो यार, ये कसमें खा के नहीं तो सुन के पेट तो काफी भर गया है। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स 90s के गानों के ज्ञान की तरफ, जहां पर दो गानों को मिक्स करके मैं चला देती हूँ और आपको पहचानना होता है कि ये जो दो गाने हैं ये हैं कौन से। यहाँ टेस्ट होता है आपके ज्ञान का। तो यानी कि इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ध्यान का। तो ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए कि ये दो गाने कौन से हैं। Here we go।

बस जी, अब मुझे डीएम करना है और मैं इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि ये दो गाने कौन से हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कोयला मूवी का एक गाना था बदन जुदा होते हैं। वेल, ये गाना शायद हमें आज याद भी है और नहीं भी है, हमने कभी सुना और उसको अनसुना भी कर दिया, लेकिन इस गाने में एक म्यूजिक का पीस है जो कि मूवी में भी काफी सारे सीन्स में फिर इस्तेमाल हुआ है, और ये जो म्यूजिक का पीस है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। लेकिन यही म्यूजिक का पीस ओरिजिनल नहीं है बाबू मशाय।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजेश रोशन की दी गई म्यूजिक का ये जो गाना था, विच गोज दिस वे।

is actually not an original piece of music. Vangelis karke there was this music composer jisne bahut hi khoobsurat music diya hai and inke music se Rajesh Roshan aksar kafi inspired rahe hain. सिर्फ वैंगलिस का यही म्यूजिक का पीस ही नहीं, उन्होंने काफी सारे और म्यूजिक के पीसेस भी उठाए हैं अपने गानों के लिए. एंड ये वाला जो म्यूजिकल पीस है दैट इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज, व्हिच साउंड्स जस्ट ब्यूटीफुली अमेजिंग.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई फिल्म या गाने कहीं से कट कॉपी पेस्ट है तो डीएम कर दीजिएगा मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज का के ड्रामा का डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2000s का के ड्रामा.
2: आज की बात 90s के साथ.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ऐसा नहीं है कि हम 90s किड्स के ड्रामास नहीं देखा करते थे. हम तो के ड्रामास तब से देखते आ रहे हैं जब से OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे इन के ड्रामास को इंट्रोड्यूस करने. और हमारे लिए के ड्रामास यूज्ड टू बी एकता कपूर के सीरियल्स जो के से ही शुरू हुआ करते थे. राइट फ्रॉम क्यूकी सास भी कभी बहू थी टू कुसुम, कहीं किसी रोज से लेकर कसौटी जिंदगी की, यू नेम इट. और हमने ये के ड्रामास देखे हुए हैं. फर्क सिर्फ इतना है तब के और अब के ड्रामास में कि तब 7 फेरे 7 दिन लेते थे और आज के ड्रामास में शादी होगी कि नहीं ये देखने को आंखें तरस जाती हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर टीवी के शटर वाले कैबिनेट,
2: यादों को चिट्ठी।
1: क्या स्टार थे यार तुम ड्राइंग रूम के। हमारे घर में नहीं थे, लेकिन जिसके भी घर में मिला करते थे ना, उस घर को विजिट करते वक्त मेरा कंसंट्रेशन तुम पर ही होता था कि क्या कमाल है यार, टीवी है लेकिन इतनी खूबसूरती से छुपा हुआ। वही बात है ना कि जिस चीज में सीक्रेसी होती है ना, उस चीज को जानने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है। मुझे हमेशा लगा करता था कि ये टीवी हमारे टीवी से अलग होगा यार, लेकिन नहीं नहीं बाद में पता लगा कि तुम वही कलर टीवी हो जो हमारे घर पर भी था। लेकिन ऐसे एक शटर वाले कैबिनेट में खूबसूरती से छिपा हुआ नहीं था हमारे घर का टीवी। तुम में रखे टीवी पर प्रोग्राम देखना ऐसा लगता था जैसे जब थिएटर में मूवी चालू होने से पहले पर्दा उठा करता था और गिरा करता था ना, वैसी सी फीलिंग आती थी अगर घर पे बैठे टीवी की स्क्रीन चालू होने से पहले तुम्हारा शटर हटाया जाता था। बड़ा ही ग्रैंड फील होता था यार। आजकल तुम्हें पता है टीवी कितने एक्सपोज्ड है, घर की दीवार पर खुलेआम टंगे रहते हैं, बेबाक और बिंदास। तुम्हारी ग्रेस की फैन, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: काउंटडाउन शोज में बाली ब्रह्म भट्ट का जब ये गाना आया करता था तो एट दैट टाइम दिस वाज जस्ट अ मेलोडी फॉर अस। किसको पता था कि बड़े होते होते ये गाना जज्बात में तब्दील हो जाएगा।
0: मिर्ची 90s का सेट।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And 90s के दौर का बाली ब्रह्मभट्ट का एल्बम का ये गाना।
2: तेरे भी जीना नहीं, ओ मेरी जाने वफा।
1: What a melodious track, यार। लेकिन ये जो गाना आया करता था तो मुझे ये गाना इसके एस्थेटिक्स की वजह से अच्छा लगता था, इसके वीडियो की वजह से अच्छा लगता था, इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता था, कानों में ना काफी चाशनी खोल दिया करता था। लेकिन इसके लिरिक्स पे कभी ध्यान ही नहीं गया अंटिल एंड अनलेस मैं बड़ी हुई, क्योंकि ये गाना जो है वो ये कहता है कि तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा, जिंदगी भर साथ रहकर मुझे होना नहीं है जुदा। And that is such a heartbreaking statement for anyone to make, yeah. Seriously, I mean, some people जो न जाने कितने साल एक साथ बिता देते हैं and then there comes a situation जहां उनको ये decide करना पड़ जाता है कि अब वो साथ नहीं रह सकते। मतलब वो जो रोज बातें हुआ करती थी, वो जो रोज सुबह गुड मॉर्निंग होती थी, गुड नाइट उसी की आवाज से हुआ करती थी, दिन में कुछ वक्त साथ बिताया करते थे, एक दूसरे की जिंदगी जो है वो शेयर किया करते थे एक दूसरे के साथ, अब ऑल ऑफ अ सडन वो इंसान हमारे लिए स्ट्रेंजर बन जाए, ये सबसे ज्यादा दुखदाई हो जाता है यार। खुदा ना करे कि किसी के ऊपर ऐसा कहर बरसे, लेकिन क्या है कि किस्मत भी कोई चीज है, किस्मत में जिसका जितना साथ लिखा होता है ना उतना ही बिता पाते हैं उसके साथ। बट स्टिल द पॉजिटिव वे टू लुक एट इट इज कि यार जितना बिताया क्या पता उतना भी ना होता हमारी जिंदगी में तो क्या करते, एटलीस्ट ये टाइप तो मिल गया ना जो बिता लिया है, बाकी किस्मत का लिखा और ऊपर वाले का किया, उसके कहे बिना तो यार एक पत्ता भी नहीं हिलता। चलो अब यहाँ पे बहुत काउंसलिंग हो गई है, टाइम फॉर दिस गाना। जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझे यहाँ के अलावा ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause it's hot।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुझे नहीं पता कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, बट मुझे तो इन दोनों को देख के बहुत मजा आया. आई थिंक द एंटायर इंडिया लव्ड इट. पुरानी जीन्स पे हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया. और रोज मैं एक फिल्म के बहुत सारे किस्से कहानियां लेकर के आती हूँ. आज आज जो फिल्म है वो डिम्पल कपाड़िया की कमबैक फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की वजह से उन्होंने एक और बेहतरीन फिल्म छोड़ी थी, बिकॉज शी हैड ऑलरेडी गिवन डेट्स फॉर दिस फिल्म. अब ये कौन सी फिल्म थी बताओ बताओ. आफ्टर 14 ईयर्स, बॉबी के बाद जब उन्होंने ये फिल्म की, उनका हीरो भी सेम था, लेकिन सिर्फ एक हीरो नहीं था इस फिल्म में, दो हीरोज थे. अब इससे ज्यादा क्लूज नहीं दे सकती हूँ, सोच के रखो, मैं गानों के उस पार बताती हूँ आपको. पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया, यू आर लिसनिंग टू मी ऑन ऑफकोर्स मिर्ची, इट्स हॉट.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये फिल्म पहले गई थी डिम्पल कपाडिया के पास और उन्होंने मना कर दी। इसलिए मना कर दी क्योंकि वो ऑलरेडी सागर को साइन कर चुकी थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वन फिल्म दैट वी ऑल लव्ड, वन फिल्म जिसमें हमें श्रीदेवी बहुत बहुत पसंद थी, बताओ कौन सी? सदमा। वो फिल्म जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं नहीं देख पाती, अगर किसी भी चैनल पे आती है ना मैं नहीं देख सकती, बिकॉज उसका क्लाइमैक्स शेक्स मी। सो वो ना मुझे एक अच्छे खासे हैंगओवर में छोड़ के जाता है, तो मैं नहीं देखती हूँ। लेकिन ये फिल्म क्रिटिकली अक्लेम फिल्म जिसने श्रीदेवी के करियर में सबसे बड़ा बदलाव लाया और उसके बाद से उनको हिंदी फिल्में और ज़्यादा मिलने लगी थी। अब सदमा पहले गई थी डिम्पल कपाटिया के पास, बट डिम्पल कपाटिया ऑलरेडी एग्जैक्ट वही डेट्स दे चुकी थी सागर को, तो शी डिनाइड डूइंग द फिल्म। नाउ इन अ वे इट वॉज गुड बिकॉज हमें श्रीदेवी द वेटरन एक्ट्रेस भी एकदम अलग ही अवतार में देखने को मिली, है ना? पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, सागर की बातें हो रही आज, तो बस इस फिल्म के गाने भी होंगे। ऑल यू गॉट टू डू इज सिट बैक एंड रिलैक्स, कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये वाला सीन तो मतलब पूरा इंडिया नहीं भूल सकता। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और सागर की बात हो, डिम्पल कपाटिया का ये सीन की बात नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? वेल, द फ्लीटिंग टॉपलेस सीन जो उन्होंने किया जब एक गाना शूट होता है और उनका जो टॉप है वो चट्टान में फंस जाता है, एंड शी सडनली गेट्स अप एंड ओहो। तो सागर की बातें करते करते इस फिल्म के सारे किस्से जो हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, क्योंकि देखो भाई मैं अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आती हूँ। अच्छा, इस फिल्म में इवन दो ऋषि कपूर वॉज द मेन कैरेक्टर, फिर भी ही वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। क्यों? उसके पीछे एक मेजर रीजन था। रीजन तुम्हें तो बताइए, मैं ऐसे नहीं बताती हूँ, कभी कभी आपका ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो गाने सुन करके वापस आओ, अभी शेयर करूंगी। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषि कपूर इसलिए डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उनको लगा था कि ये जो फिल्म है ये बॉबी के फेमस होने के बाद, पॉपुलर होने के बाद, हिट होने के बाद आ रही है। इसमें डिम्पल कपाडिया और ऋषि कपूर की केमिस्ट्री जो है वो एकदम बॉबी जैसी रिपीट होगी, विच डिड नॉट हैपन। ही एक्चुअली अक्यूज द डायरेक्टर रमेश सिप्पी, उन्होंने बड़ी सारी फिल्म मैगजीन्स में उस टाइम पे इंटरव्यू दिया कि उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा डिटेल में दिखाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रमेश सिप्पी फोकस्ड मोर ऑन शोइंग यू नो द कम बैक ऑफ डिम्पल कपाडिया। इस चक्कर में उनका कैरेक्टर साइडलाइन हुआ और ही डिड नॉट गेट द लॉरल्स फॉर द फिल्म। इट वॉज डिम्पल। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एक आर्टिस्ट भी आए थे इस फिल्म के प्रीमियर पे। वो कौन थे और कितने अलग ढंग से वो आए थे ये इंटरेस्टिंग बताऊंगी। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस समय के अखबारों की ये सबसे बड़ी खबर हुई थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज बात हो रही है सागर की। इट वॉज अ कमबैक फिल्म डिम्पल कपाडिया की। 14 साल के बाद वो फिर से कैमरा फेस कर रही थी, मतलब बॉबी करके वो काका यानी राजेश खन्ना के साथ बस शादी में सेटल हो गई थी और उसके बाद उन्होंने फिल्म को टाटा बाय बाय कह दिया था। आफ्टर 14 ईयर्स शी मेड अ कमबैक विद द फिल्म ऑफ कोर्स सागर एंड रमेश सिप्पी वाज डायरेक्टिंग द फिल्म। अब जब इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया तो उसके मेन हीरो फिल्म के लीड्स यानी ऋषि कपूर या फिर कमल हासन नहीं थे, बल्कि पता है कौन थे? एमएफ हुसैन साहब, द रिनाउंड पेंटर एमएफ हुसैन साहब। वो इस फिल्म का प्रीमियर बेयर फुट नंगे पैर देखने आए थे और फिल्मी मैगजीन्स ने न्यूज़पेपर ने बड़े बड़े आर्टिकल्स इस पे लिखे थे। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें विद मी श्रेया। वापस आओ और भी करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ कर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

कहते तो ये भी हैं कि उस समय रमेश सिप्पी एंड डिंपल कपाटिया दोनों का अफेयर हुआ था ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है, एक ऐसी फिल्म जो 14 साल के बाद फिर से डिंपल कपाटिया को बड़ी स्क्रीन पे दिखाने वाली थी, क्योंकि उससे पहले तो डिंपल कपाटिया ने बॉब भी की और मेजर हिट हुई, स्मैशिंग हिट हुई एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन फिर वो राजेश खन्ना के साथ शादी करके सेटल कर गई। और फिर उसके बाद रमेश सिप्पी की इस फिल्म से उन्होंने कमबैक किया। अब सिप्पी साहब और डिंपल कपाटिया का अफेयर हुआ और इसके बारे में सबने जम करके लिखा। रमेश सिप्पी चाहते थे कि डिंपल कपाटिया सागर फिल्म करें और ना कि सदमा करें, सदमा भी उनको ऑफर हुई थी और भाई डिंपल कपाटिया ने हाँ कह दी। इस बात को लेकर के भी फिल्मी मैगजीन्स ने बहुत कुछ लिखा था। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, आज इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक इस फिल्म के गानों के साथ भी, तो बस वापस आओ

सुन रहे हैं पुरानी जींस श्रेया के साथ सिर्फ मिल

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऐसा बहुत कम बार होता था उस टाइम पे, क्योंकि एक्टर्स के बीच में ना बहुत राइवलरी होती थी। जब एक एक्टर दूसरे एक्टर की खुल करके तारीफ करे, और कमल हसन ने सागर फिल्म में ऋषि कपूर के लिए किया। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। वेल, कमल हसन ने ऋषि कपूर की जम करके ऑन स्टेज तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतने एक्टर्स को देखा है, इतने एक्टर्स से मिले, लेकिन ऋषि कपूर एक्सट्रीमली हैंडसम, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग है। एंड ही ऑल्सो वेंट ऑन टू से कि ऋषि कपूर को खुद नहीं पता है कि वो कितने कमाल के लगते हैं, और लोगों का दिल, लड़कियों का दिल वो कैसे चुरा लेते हैं जैसे ही ऑन स्क्रीन आते हैं। वैसे कमल हसन इस फिल्म के लिए दो कैटेगरीज में फिल्म फेयर अवार्ड्स की नॉमिनेट हुए थे। कौन सी थी वो दो कैटेगरीज और किसके लिए जीते? आई विल लेट यू नो, कम राइट बैक। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कमल हसन गॉट नॉमिनेटेड इन बोथ द कैटेगरीज। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, सागर फिल्म की बात हो रही है और कमल हसन को ना दोनों कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला था इन फिल्म फेयर। ही गॉट नॉमिनेटेड इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी, ऑल्सो इन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी, और जीता किस में उन्होंने? बेस्ट एक्टर। मतलब ये तो एक्चुअली में विन एंड विन सिचुएशन थी कि भाई एक्टर भी हैं, सपोर्टिंग एक्टर भी हैं, एक ना एक अवार्ड तो उनके नाम होना ही था। बट यस, इट वेंट टू बी बेस्ट एक्टर वाली कैटेगरी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ अभी इस फिल्म के गाने शुरू करते हैं। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बैक टू बैक एक्शन फिल्मों के बाद रमेश सिप्पी साहब को लगा कि भाई मैं भी प्यार में हूँ तो कुछ प्यार भरा बनाए। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। वेल, रमेश सिप्पी साहब ने ना 3 फिल्में बैक टू बैक बना डाली थी एक्शन की, यानी शोले में 1975, वेल देन शान हैपेंड इन 1980, उसके बाद उनकी तीसरी फिल्म थी शक्ति 1982, और ये तीनों सुपर डुपर हिट फिल्म थी। बट कहते हैं कि सागर के टाइम पे रमेश सिप्पी वॉज इन लव, वॉज हैविंग एन अफेयर विद डिम्पल कपाटिया, एंड ही वॉन्टेड टू शो डिम्पल जी इन, यू नो, इन अ रोमांटिक एंगल, एक ऐसी फिल्म जिसमें रोमांस दिखे। तो उन्होंने इन तीनों एक्शन फिल्मों के बाद डिम्पल कपाटिया और दो हीरोज के साथ बनाई थी सागर, विच वॉज अगेन अ स्मैशिंग हिट। वेल, इसी फिल्म का गाना आपके लिए, only on Purani Jeans, you're listening to me on Mirchi, it's hot.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आपको श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। 14 इयर्स के बाद जिस फिल्म से अपना कमबैक किया था डिंपल कपाटिया ने। अच्छा, फिल्म की बातें तो बहुत सारी होती ही रहेंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस समय ये सुनो। और इसमें पंचमदा का ये गिटार है शायद, ये जो इस गिटार को वो स्ट्रम कर रहे हैं, अभी बड़ा खूबसूरत सा एक पीस आएगा, वो भी सुनिएगा। आर डी बर्मन साहब के कॉम्पोजिशन, जावेद अख्तर साहब के लिखे हुए ये लाइन, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, डिंपल कपाटिया की आंखों पे लिखा गया था ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रानी जीन्स पे अब श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है और अगला गाना ये ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सो इस गाने में डिम्पल कपाटिया इज वेयरिंग वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसेस। हाँ, पूरे गाने में उन्होंने ड्रेसेस पहनी है और सागर किनारे बहुत सिंपली शूट किया गया ये गाना। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाटिया की केमिस्ट्री तो वैसे ही बॉबी में हमने देख ली थी, एकदम पर्दे पे आग लगा देती थी इन दोनों की केमिस्ट्री। सो दे डिडंट हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ स्टेप्स, तो कैजुअली बस हल्का फुल्का डांस करते हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके ये गाना जब आता है ना, सागर किनारे दिल ये पुकारे, ओहो हो। किशोर दा और लता जी के पास पंचम दा की ऑफकोर्स धुन है कमिंग अप राइट नेक्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक फिर लो पान चबा। आहा। अरे

0: छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी लेट्स हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट डेडिकेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्हें बादलों से थोड़ा डर लगता है, और बादल के गरजते हुए को वो एक एक्सक्यूज लेते हुए सामने वाले से चिपक जाते हैं। हाउ रोमांटिक। वैसे मेरी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं आई। हमेशा मैंने ऐसी सीन्स को या ऐसे गानों को देख करके सोचा है ना कि कभी तो ऐसा होगा कि कोई बादल गरजेगा और कोई मेरे साथ ऐसा होगा जिससे मैं चिपकना चाहूँगी, बट इट हैज़ नेवर हैपेंड। बट एनीवे, आई विल कीप होपिंग कि ऐसा रोमांटिक सिचुएशन श्रेया की लाइफ में भी आए। ऑन दैट नोट, गुड नाइट, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो, एंड ख्याल रखो अपना। और मुझसे कुछ कहना है ना तो फेसबुक या इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव इज माई हैंडल, वहाँ पे बस DM कर देना।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: यार कभी कभी मन होता है ना इस कॉर्पोरेट वाली नौकरी को छोड़ के पहाड़ों में जाके मस्त अपना एक कैफे खोल लूं।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड आप एंड आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ये थॉट कभी ना कभी तो आया ही होगा। इनफैक्ट जब आप हिमाचल या कहीं पहाड़ों में जाते होंगे तो और भी ज्यादा ये थॉट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है आपके दिमाग में। और अचानक से मैं इस चीज की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज OTT पे फिलहाल मुसाफिर कैफे नाम की एक सीरीज काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है एंड आई हैव लव्ड इट टू द कोर। माइंड यू ये दिव्य प्रकाश दुबे की नॉवल मुसाफिर कैफे पे बेस्ड है एंड इस सीरीज की इतनी चर्चा इसलिए बिकॉज इसका सीजन 2 अभी अनाउंस भी हो चुका है एंड जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स से इसको लेकर उसके मद्देनजर मैंने आज मिर्ची गिरफ्तार किया है अपने शो पे नन अदर देन प्रीति कौशिक का रोल प्ले करने वाली महिमा मकवाना को। वेल, उनके साथ इस कॉन्वर्सेशन के अलावा देयर इज अ लॉट प्लान्ड फॉर द शो बट उसके लिए आपको ट्यून्ड इन रहना पड़ेगा ना मिर्ची पे। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स ऑल।

दिकड़ी पकड़ी दिक्क दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिका दिकड़ी दिक्क दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो मिर्ची फिल्म ची गेम की बात कर रही हूँ, बाहुमोशाय, जिसकी शुरुआत आज मेरे साथ की बैंगलोर से मयूरी जी ने। और आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए, बिकॉज शी गॉट स्टक एट अ पॉइंट, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़ी हैं सूरत से निशा जी। सो आर यू रेडी टू कंटिन्यू द गेम मैम? ऑल द बेस्ट देन। माई क्वेश्चन वॉज, ऐश्वर्या राय किस फिल्म में एक स्मॉल टाउन सिंगर होती है जो ओवरनाइट सेंसेशन बन जाती है?
3: ताल।
0: ताल में मानसी से किसको प्यार होता है?
3: अक्षय खन्ना।
0: अक्षय खन्ना किस फिल्म में एक एरोगेंट एक्टर हैं जिसको ऑस्कर जीतने से ऑब्सेशन है?
3: तीस मार खान।
0: सो तीस मार खान में वॉनबी एक्ट्रेस कौन है?
3: कैटरीना कैफ।
0: वेरी गुड। कैटरीना कैफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर किस फिल्म में है?
3: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
0: ओके, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक का फोन कार से बाहर कौन फेंकता है?
3: फरहान अख्तर।
0: वेरी गुड। फरहान अख्तर किस फिल्म में खुद को ही कॉल करते हैं?
3: विद दीपिका पादुकोण।
0: यस,
3: कार्तिक कॉलिंग कार्तिक।
0: बहुत बढ़िया। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में उनको किससे प्यार होता है?
3: दीपिका पादुकोण।
0: दीपिका पादुकोण किस फिल्म में साउथ इंडियन डॉन की बेटी है जो अपनी शादी से भागती है?
3: चेन्नई एक्सप्रेस।
0: और आपने भी एकदम एक्सप्रेस मोड में ये गेम कम्प्लीट किया है। और इसी के साथ आप बनी है हमारी आज की दूसरी
1: मिर्ची फिल्म जी।
3: थैंक यू सो मच श्रुति, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू।
0: सेम यू।
3: आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नो, द बॉलीवुड जस्ट गॉट यू नो इग्नाइटेड इन मी। आई एम फीलिंग सो गुड आंसरिंग दीज क्वेश्चंस
0: एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू गॉट दैट फीलिंग, क्योंकि यही है मोटिव मेरा कि हर इंसान के अंदर के फिल्मची को जगाना है। तो बाबू मोशाय, अगर फिलहाल आपके फिल्मची कीड़े को फोमो हो रहा है, देन वरी नॉट, ये गेम कल फिर हाजिर होगा राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स ऑल।

Radio Mirchi, it's hot.

0: अगर जिंदगी में इतने उल्टे पुल्टे चैलेंजेस लेते ही रहते हो तो जरा मेरा फिल्मी उल्टा पुल्टा चैलेंज लेके देखो ना।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं कॉल करती हूँ और आपके साथ इस चैलेंज की शुरुआत करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक फिल्म का नाम उल्टा बताती हूँ, आपको सही नाम गेस करना होता है। तो आज हमारे साथ सबसे पहले गुड़गांव से टेलीफोन लाइन पे जुड़े हैं अरुण रावत जी। तैयार है सर?
3: हाँ।
0: तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, ए दिल है आसान,
3: ए दिल है मुश्किल,
0: तू सच्ची मैं ईमानदार,
3: तू झूठी मैं मक्कार,
0: जवान होगा तेरा बेटा,
3: बुढ़ा होगा तेरा बाप,
0: क्या बात है, ह्यूमन
3: जानवर,
0: दो समझदार गांव में,
3: दो दीवाने शहर में,
0: ओके जी, डियर मौत,
3: डियर जिंदगी,
0: क्या बात है, हमेशा हेलो कहते रहना,
3: कभी अलविदा ना कहना,
0: बहुत बढ़िया, बेटी,
3: बेटा,
0: कोई खो गया,
3: कोई मिल गया,
0: अडल्ट,
3: बच्चा, नहीं, बेबी, बेबी,
0: यस, पुरुष,
3: औरत, स्त्री, स्त्री, सॉरी, स्त्री,
0: क्या बात है, बोल बोल के,
3: चुप चुप के,
0: बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा टाइम लगा आपको पिक करने में, बट यू एक्चुअली डिड रियली गुड सर,
3: थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इन योर नंबर।
3: एक्चुअली मुझे थैंक यू बोलना चाहिए आपको कि आपने मेरे को माने कांटेक्ट किया, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि आप मुझे कांटेक्ट करोगे।
0: अरे ऐसे कैसे नहीं करेंगे सर, वी थ्राइव ऑन दिस कनेक्शन दैट वी बिल्ड। तो गाइस अगर आप भी मेरे शो पे किसी गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे जाके मेरे डीएम सेक्शन में अपना नंबर जरूर भेजिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।